0: ना खासा चाचू दे ये ला कोसा तो मोंबे डिग्वे दे दा चाय के तोपी सातु जुबी कुछुम दागे लेजा डिग्वे जुटे सिंगों से जुए हिबो ग्वेडी कुतो जेडू तो मोंबे यायो शोडू डिग्वे जुए बारे सातु जुटे सिबा माने तो ये शेजो जे माजा कुजु चेंबो मिबे वो कोने योंगु हिना लाजा जोंचे चोंदे जुए जे जुए जां 原罪盲目过车国家扎所写把跌到列国节日国写把当日记开节节写节写把局南庄考验在住了东镇内密先天写作节马扎东马滚的东月严重传达就给帖中介人被家家主角当区人被家家局给来节家家送去东位娘主席东恰的东年中国作为朝着送了就给彩的写把马子大东日电空地当写节千里节马老将萨东内月节送把里 拉萨中介介小姐呢？彩蝶姐姐带队从工的蒙贝小姐十七堂，蒙贝娘子十七姐组队。干嘛个呢？我在水坝牛头巴当，娘子早起十八点过来天门给巴当。这次先到来的组呢，蒙贝作为科技局的中国人，蒙贝这次卡萨布给巴当，人类先进军队冲过去。 日子将那对错主动对家属送上老总了，相对区别，连续加强主角的接到中秋年头的心愿。一样，北美独立被科组及三家东北协的，老子心里加强等着老总追呢。干嘛讲个人我就蒙被下有科家随的，专门做新天马当我就自己通东北协约。那些人家赞助矿产组呢，当当忙做起下有，为啥子矿我就追的？下有有三队的被巴当。
1: 跌宕车前，我就转车所，每日接车群运输对比，专门来对组内，专属给今年考国家老总掏出钱一百的。广大姐妹们，拉萨中介接前来接前年休息不弄这档，先生休息前呢，下个月到明年，要不月明了就啊，工地冬天，老年的中国作为用手加把档，跌宕这位总中的农村对比，最能下就一百的。
0: 主播同胞，工作三八天的拉萨用手，蒙被作为国家对比过年。天天凌晨弄这些被弄得恰松动杂松，凌晨的张正根可把老爸顶在当，凌晨做生活这个孙男米，小兰看见龙姐姐这些被凌晨见到走路，大要么。

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma nyu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यो से के जो लंका का मांस दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जटा मुन्यो रो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने चिप जो लंका दी पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिन के का शाम बत की छि रो तिन मो ने ला सान रो रे और रे रे
1: लंका क्यों तो हमें छाया बस
2: के चला
0: छि पेंडो रे जो कोयो कोया पोता
3: कोयो ला बाजो चिंबो मयो विची, चामी, जेजु लांको ला, माँ जग योना, या पो यू।